जोजुलपा थौ नेपाल सम्बचिन्छ सब पी खुद अनला थो चतुर्दशी थो रेडियो नेपाल ख आने नाति स जिरुबी पाके नेपाल भाषा या समाचार नुहुमा पर्दा न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा न्याय सम्पादने शङ्का बुलनीको छुन ज्या थप पाके मजुईको थयादिगु दु सर्वोच्च अदालतले हिगो शनिल पद भाला क खाना दिसे प्रधान न्यायाधीश शर्मा न्याय सम्पादने हस्तक्षेप मयागु शङ्का बुलनीको छुन ज्या थप पाके मजुईगु लिसबिया दिल वेक्ल थगु नापाङ्गु ज्या धैगु हे स्वतन्त्र न्यायपालिका या त अछुन तेगु जुइगु खना दिल न्यायपालिका या संस्थागत स्वतन्त्रता न्यायाधीश तेगु व्यावसायिक निष्पक्षताके लाते गुजा मजुगु फलसाबिया दिल न्यायपालिका नेपाल संविधान या संरक्षक मौलिक अधिकार या प्रत्याभूतिकर्ता वो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था या छगु मु स्तम्भ जुगु कना दिसे शर्मा स्वतन्त्र निष्पक्ष सक्षम जनविश्वास जागु न्यायपालिका या त धसवा के त संरक्षण यागु हे थगु कार्यकाल या मु ध्यय जुइगु बचाउ पङ्का दिल अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्लिम वागले सुशासन सरकार या नापाङ्गु ज्या जोगु धयादिगुदु प्रतिनिधि सभा या आर्थिक दण 2083-84 नीति विनियोजन विधेयक या सिद्धान्त हो प्राथमिकता या विशेष संसद लोङ्गु नेसाली सबिया दिसे अर्थमन्त्री डाक्टर वागले सुशासन मध्येक सेलाको आर्थिक विधिता मलाई गुकना दिसे सरकार प्रणाली भिङ्केको पाखे आर्थिक नपुयाता बान्लाकु बालाकेगु कथन योजना चङ्गु धुवा थिका दिल अर्थमन्त्री डाक्टर वागले सरकार र निजकगु अर्थतन्त्र या पुनः संरचना एकीकृत पूर्वाधार नापा या प्राथमिकता दोलन दोल्यामो तेगु नीति लजका बोलाङ्कीगु नापा मनु तेगु जीवन स्तर पिङ्केता ग्वाली थ्याङ्कीगु कना दिल बैठकै अर्थमन्त्री डाक्टर वागले सरकार सामाजिक न्याय या त आर्थिक उन्नयन नापा स्वागु नीति कयागु कना दिल प्रतिनिधि सभा या मेगु बैठक थौ सुतसिया झिन छता इले चुनिगु गोसादु राष्ट्रिय सभा मिगा बैठक वैगु आर्थिक दण 2083-84 नीति विनियोजन विधेयक या सिद्धान्त व प्राथमिकता दथी सल जुगुदु सलय झोले लोङ्गु नेसते गुलिसबिया दिसे अर्थमन्त्री डाक्टर सोर्डिङ वागले समतामूलक समाज देखेको नीति सरकार या नीति व ज्याचो व दक्षिया बजेट निर्देशित जुइगु कनादिगुदु शासकीय सुधार पूर्वाधार देखेगु सरकार या ध्येय केन्द्रित जुइगु नेथना दिसे अर्थमन्त्री वागले विपन्न व भाता पाखेन तापागु वर्ग या दति लोनेगु या न वैगु आर्थिक दह या बजेट निर्माण यागु बचा ब्यादिगु दु विनियोजन विधेयक या सिद्धान्त व प्राथमिकता दति सहल सम्भूति कापी सांसद पिन्स आर्थिक कथम भिङ्केगु नीति निजी लागा या मनोबल थकाता ध्यान बिमागु नसा ज्वल निथ छेलाबुला जुइगु ज्वलातेगु गुणस्तर भिङ्केगु नीति वैगु बजेट थ्याबी मागु कनादिगु दुसा अथ्याना सांसद त्यसमा उपया चङ्गु ठिके जुगु ज्वल नियन्त्रण या त धनी व गरिब दति तब्याना चोङ्गु लागा या त मह यागु रणनीतिक ज्याचो त्यता थ्या बिता सीमान्तकृत समुदाय या उत्थान हो ल्याम स्वरोजगार या योजना त्यता थ्या बिता इनाफेना दिल अथेना सांसद पिसा कृषि व चिधङ्गु उद्योग विकास या नीति प्राथमिकता बिमागु किसान तेगु नीति राहत हो नव उद्यमशीलता त्यता सौलेत जागु ऋण लल ह्या मागु ल्यामो जनशक्ति या विदेश पलायन दिकेगु ज्याचो त हे मागु ऊर्जा व पर्यटन प्रवर्धन ब बी मागु व रणनीतिक महत्व या दीर्घकालीन योजना त्यता थ्या बी मागु कथ सरकार या ध्यान कोसला दिगुदु थोयान्य बैठक या शून्य इले सांसद पिसा व्यक्ति समाज उपया वनासोङको हत्या लुटपाट या झाँका त नियन्त्रण या त वा व धाकु फय या हुने सेनाचङ्गु विद्युत प्रसारण लाइन या त याक्न भिङ्केता विस्थापित सुकुम्बासी त्यता याक्न पुनस्थापन या त व माको सहल मध्येक संवैधानिक संशोधन या ज्या न्य मज्या के त सरकार या ध्यान कोसला दिगु खसा राष्ट्रिय सभा या मेगु बैठक जेठ 8 गते शुक्रबार निनेसिया छता इजु या झिङ्यागु मिनेटे चोनिगु गोसादु सरकार सुकुम्बासी बस्तीसँग विस्थापित जुपिन त पुनस्थापना नीति छेखापट्टिको निङ्या दो ढेबा ल लागेको जुगुदु प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद या कार्यालय सिंह दरबारे मेघ चङ्गु मन्त्री परिषद बैठक ये सोनिक खुसी सिते चनाचोपी
सुकुम्बासी तेत चिकुबले विस्थापित जुपी मनुतेगु धल रुजु याना छेकापति कम्पूर्ण स्थापना खर्च कथ नि यादो ढेबा लल्हागु कोछिनाको सरकारी प्रवक्ता सस्मित पोखरेलन जानकारी बिहा दिलसा प्रवक्ता पोखरेलन जोखिममा जागो बस्तीसँग चिकु पिन्ता वैकल्पिक ब्या चुनेको व्यवस्था थप्न हे या त प्रोत्साहन कथ न्यामासिया छेज या त राहत कथन झिङ्यादो लापतिको लल ह्यागुन जानकारी बिहा दिल अथियाना विस्थापित जुपी सुकुम्बासी छेज या थकालिपी बुढाबुढीपी अशक्त असहाय व थग व्यवस्थापन या मफुपी मनु व छेज या त तोके यागु होल्डिङ सेन्टर तेके तेगु मन्त्री परिषद कोचिनागु कनादिगु दुस अथियाना मचा मस्त व विद्यार्थी तेगु आँखा बोनेगु बङ्केगु विद्यालय सुनिश्चितता व स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितता स्थानीय तह नापाया समन्वय व सहकार्य यागु सरकारी प्रवक्ता नापा शिक्षा मन्त्री पोखरेल कनादिगु दुस अथियाना मन्त्री परिषद बैठक नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजना नीति स्विजरल्यान्ड सरकारसँग वैगु खुगु फुटी सच्ची झिङखुगु मिलियन स्विच ठेवा अनुदान कथन स्वीकार यायगु अरणीको राजमार्ग या त भिङ्केगु चीन सरकार लल हाइगु नेगुगु फुटी सुई खुगु मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार यायगु कोचीगु दुसा मन्त्री परिषद बैठकमा प्रत्यायन नियमावली 2083 व सैनिक सेवा खुकको संशोधन नियमावली 2083 स्वीकृति आएको नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2083 कथन जुईको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी सचिव या दरबन्दी मिलानी आएको पदस्थापन आएको नापाया कोचिना जुगु मन्त्री पोखरेलका दिल भारतीय चिया विकास निगम चिया आयाते ट्रक पतिका प्रयोगशाला परीक्षण ल्याब टेस्ट अनिवार्य याइगु नुगु नियम छेले धुङ्कानी वङ्गु न्युवा निसे नेपाली चिया या निर्यात पूर्ण कथन दिनासँग दु भारतीय थियो नीतिगत कथन छाक्क गुली दक्षी न्यागु निसे खुगु अर्व वैदेशिक मुद्रा मुङ्कीगु नेपाया चिया उद्योगे त धङ्गु हात्या बोलङ्कगु बोलाना चङ्गु व्यवसाय त्यसन थागु दु नेपाल चिया उत्पादक संज्ञा नाय आदित्य पराजुलिया कथा भारत वङ्गु वैशाख 18 गते निसि छेलिगु याना स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर एसओपी जारी आगु ख नुगु प्रावधान नेपाली निर्यातकर्ता या नीति प्रशासनिकको आर्थिक हात्या त बोलङ्कगु दु थुया नेपाली चिया निर्यात नीति छगु उद्योग छक प्रयोगशाला परीक्षण या धुङ्कानी वहे प्रमाण लिधसा झिङ्यानु तक झिगु ट्रक चिया अफु भारत छुए फैको व्यवस्था जुया चुङ्गु ख तर नुगु नियम कथ काँकड भित्ता नाका जुसे भारतीय सीमावर्ती पानी ट्याङ्की भन्सार धुवाने साथ ट्रक पतिक चिया नमुना परीक्षण अनिवार्य कथ भारत सरकार मान्यता का मागु प्रयोगशाला छुए मागु बाध्यता बोलङ्गु दु नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी सामाजिक सञ्जाल पाखे परीक्षा न्हे कक्षा बाह्र या नेस पौ नापा उत्तर सार्वजनिक यागु ज्याकेल हावा पिनिमा सीता मिग सार्वजनिक यागु दु जोपिले गोर्खाया भीमसेन थापा गाउँपालिका

0: पोखरेल मङ्काई जालसम्म विशेष अदालत पूर्व छ्या नितिन थुनाके छुएको आदेश बदरिया से तरौती थुनामुक्त याता आदेश बिगुख। नेपाल प्रहरी नागरिक केन्द्रित प्रहरी सेवा व प्रविधि मैत्री रूपान्तरण यता मुख्य थ्या बिया वैगु सोधया नीति रणनीतिक योजना सार्वजनिक यागुदु। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साले मिगछगु ज्याझोया दथ्वी प्रहरी संगठन यता अञ्च दिशी लाकुसे उत्तरदायी व भलसान जाइगु संस्था या कथा पलिस्ता यागु आज नापा रणनीतिक योजना सार्वजनिक यागु ख। ज्याझोले प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्के प्रविधि अधिकम अधिकतम छेलाबुला याना जन्तयाता याक्न शिवे याक्न सेवा लल ह्यागु आज जुनापा 2083-85 या रणनीतिक योजना हिज्याकागु कना दिल। आदेशम पिनिया बुख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प या चीन भ्रमण सिधे सात छुन दि लिपा। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन चीन भ्रमण या झोले बेजिङे थिङ्का दिगुदु। राष्ट्रपति पुटिन चिनिया राष्ट्रपति सी जिनफिङ नापा उच्चस्तरीय वार्ता नीति बेजिङ थिङ्का दिगु ख। क्रेमलिन या कथ निमा नेता रुस चीन रणनीतिक साझेदारी यता अझ बल्ला किगु। अन्तर्राष्ट्रिय व क्षेत्रीय मुद्दाके समन्वय उप किगु। अहिलाचङ्गु विश्व व्यवस्थाके मङ्का धारणा देखिगु विशेष आफ्नो सहल व्याकिगु ज्यासोदु। अमेरिका लस एन्जल्स लिक घ्या दुगु थासे छोगु मिया हुनी दोलन्दो स्थानीय त मेथा हुने त इनाफ यागु दु। लस एन्जल्स या डाउन टाउन लागा अथे पिगु माइल अथे धैगु खुइगु किलोमिटर उत्तर पश्चिमे दुगु सिभी भ्यालेन भ्यालीसँग सोमबार सुथे निसे मि छुता चङ्गु ख। अथे चगुलाग निया त जनसङ्ख्या दुगु उगु लागा मि च्याता सने धुङ्कानी जलाखला प्रशासन व अग्नि नियन्त्रण निकाय उच्च सतर्कता क गासे मि नियन्त्रण फको ग्वाली या त कुतयाना चङ्गु दु। तस्कौँ वोगु फेया हुनी चिहागु इहे इलेसँग यास ङेनिगु हेक्टर क्षेत्रफले मि बोलने धुङ्क गुली हात्या बोलन चोङ्गु थागु दु। आ मौसम या जानकारी थौ देया हिमालय पहाडी लागा भतिचा खिउसे चनिगु जुगु दुस कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश छुन थासे मधेस प्रदेश नापा ल्याउदुगु हिमालय पहाडी लागाया मो थासे हिने तक वा व चफु कुहा वैगु सम्भावना दु धागु दुस। सुदूरपश्चिम लुम्बिनी प्रदेश तराई लागा क्वागु फे वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु। वङ्गु नि पे घाउले ये स्वनि गया क्वाज नि च्यागु फुटी खुगु डिग्री सेल्सियस दति दु साथौन हिने ये स्वनि गया क्वाज नि हेगु निसे नि गुगु डिग्री सेल्सियस दति स्वनिगु दुखुमा दु। थौ सुथे ये स्वनि गले ज्ञाता इजुया हेगु मिनेटे लुगु निभा शनि ल खुता इजुया ङे ङ्यागु मिनेटे बी। रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुवन चिताइले नेपाली भाषा या समाचार नेनादिस शुभ।
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल नेपालको समावेशी आवाज।

बजेट जोई ओतु कपला गेर्की सकुलकी पलजोर नेताङ यार्गे जोपक्याने बजेट जोगोला सुङला टोङ्गु नाङवाय ल्यारिमला नोरलोन खाङ सिलोन तेजिन लोनसोक ल्याखुङ नेपाल राष्ट्र बैङ्क ताङ डेलो उतुप सक्पी कुसाप्ती सक्सु क्यानाङ्गु सेनवाय सिङजिन रामचन्द्र पौडेलकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक माङचोला साने देशन सुङकी ल्यागेन खक्षण पोतु सुङवाय सुनसरीकी कोसी युलसोकवाला जौ लौकही सिटी हल तेम्डिल ल्यारिमला सुङलप नगिन मिमाङ तुई इच्छे तङ रेवा नङसिन यार्गेकी लाका त्यो हुर्ता क्याने कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक माङसोकी मिकिल डुपा कितुप्ला साने देशन तहकी हुर्ता क्याने लाका किगो सुङसुङ सिङसिन पौडेलकी विक्रम लोङितोङ टुकचुरायाङ्गाला कोसीकी बाँध नागलसीमा कलेला स्वरूप ती युल सकपाला यर्गेकी लाका त्यो हुर्ता क्याने कि ओतुप थोङसीमा गासु लाउतङ तह सुमकर्की सुङकी सिग्डिल्की दिलोला रङजुङ कलेतेमा सुङक्योप कितुप्ला सुङकी गोमालारङ टडी कितुप रेवाक्या नाङसुङ सम्भा कोचेक जुङ्गुक टिम्पोन छेन्पो डाक्टर मनोज कुमार शर्माकी ठिमखाङ छेन्पोकी ठिम्पोन छेन्पोकी ल्यागेन लानङवाय सिङजिन रामचन्द्र पौडेलकी डाक्टर शर्माला कोसाकी तम्चे सुनङसीमा दाङराङ खोङ ठिमखाङ छेन्पोला फेप्ने कोसाकी ल्यागेन लानङगुबिन सिंहदरबारला देउ संसदीय सुनवाई सोक्पी सोक्दुकी ठिम्पोन छेन्पोकी कोसाला खोङला थाक्चोत क्याउ जुग्ला एम्बी सठिमकी धारा सैचिकतङ यिसुगुकी उपाधारा यी नङसिन संवैधानिक परिषदकी सिफारिसला सिङजिनकी दाङराङ डाक्टर शर्माला ठिम्पोन छेन्पोकी कोसाला कोसेक्या नगुबिन नेपाल ल क्याम्पसने बिएल तङ ग्याकर्की पुणे जम्बुलिङ लोप्टाने एलएलएम क्या नङ्गुप खोङकित एमबी त्रिभुवन जम्बुलिङ लोप्टाने श्रम तङ ठिम कोरला पिएचडी क्या नगुबिन ठिम्पोन छेन्पो डाक्टर शर्माकी लाकी तुसो विक्रम लोङितोङ गेचु ग्यागु असार लाकी गते झिसेको तुप सेनवाय गलुप लोङप चुने जुन रङजुङ तङ खोरिक सुङक्योप कोर्ला लाका फेन्चेन पोक्याउला चिकोर्की जम्बुलिङ वन्यजन्तु कोसकी नेपालकी एम्बी माग्मिला चिकोर क्यानवाय कोस गोसु लोसुङचु सोआ सुमलेपु कप्ला रङजुङ तङ खोरिक सुङक्योप सखुला मक्मिकी क्याउ ल्यागेनला चिकोर्की दाङ एम्बी माग्मिला चिकोर क्याउहिन एम्बी मक्मिकी विक्रम लोङितोङ सुमचु सोआ निने जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज तुई सुङक्योप ल्यागेन लङ्गिन वाउ तङ तन्द राष्ट्रिय निकुञ्ज चिङी वन्यजन्तु आरक्ष्य चिक तङ कार आरक्ष चिकला एम्बी मग्मितुई सुङक्योप किउ सेनवाय दिलोकी स्वकाकी तुसोला खाङरी नासोक जेकु तन्दोकला अनुमति लङ्गुप छिगेलकी मितुई थो फडिन गनवाय एम्बी टोसम सोक्पी सेतुप नङसिन चिलो निथोङ निसु टुकी स्प्रिङ सिजनला खाङरी जेकु तन्दोकला गेलखप दिन्छु थोन गुकी तोङ चिकताङ सही चिकताङ गेचु ग्या चिक मितुई अनुमति लाउ सेनवा सिसी तिनाङला तेरिस नाङ लाक्पा जमोलोङमो जेकु तन्दोकला अनुमति बिन्दु विभाग कि लेन खेपेल कि तुपमी हिमाल गौतम कि खेन्तोक नाङसुङ तन्द सेक्ला जमोलोङमो जेकुला गेलखप ङपचु ङाङ कि सही जिताङ गुप्चु गुवाजी मितुई अनुमति लाउ हिन सिसी तिनाङला तेरिस नाङ लाक्पा ज्ञानक कि मियो तुप सेनवाय तुग्राङ क्याने ग्याकार बेलायत रसिया अस्ट्रेलिया जापान नेपाल तङ ब्राजिल कि मितुई सङ जमोलोङ मोजेको तन्दोकला अनुमति लाउ सेनवाय तन्दी तुसो सम्भ नङसिन गेलखापकी सुङकी लोप्टातेवला तेप गिर जोपलाका गोसुनवाय इसिडी ने जिन्टा चिङी सेकी लोपजुङला तुसो नङसिन गिर तङ्गुप लाका गोसु सेनवाय दिकी तन्दोकला लोपजुङ तेजिन सिर्मु लोनखाङकी काठमाडौँ जम्बुलिङ लोप्टा स्कुल अफ एजुकेसन कि डिन प्राध्यापक डाक्टर बालचन्द्र लुइटेलकी गोठितला तेप्तिव गिरो जोप्ला लाकी सोक्पा जोनवाय मिरा गुकी सोक्मितुई लाकी सोक्पी दाङ लोपजुङ लोनपो सस्मित पोखरेल ताङक्यान थेङ ताङबोकी सोक्दु देने लाका गोचु सेनवाय लाकी सोक्पी ला टुक नाङला प्रतिवेदन टरिक्याने गोचु हिन् गस्तिला ओतुप कोर्सु मक्मी सोक्पी गेलखप्की दासा नाछोक्ने थामा नाकपुतेङ क्यान मिरा चुपदिन राजिम्बु सेनवाय केन्द्रीय कोर्सु मक्मी समाचार कक्षकी सेतुप नङसिन जापाने मिराजी सिराहा तङ कैलालीने मिरा सुमसुम मकवानपुर तङ ललितपुरने मिरा निङी तङ उदयपुर तङ कपिलवस्तु तङ पर्साने मिरा रे रेजिम्बु सेनवाय लागु औषध ब्युरोकी सोक्पी खोङतुई लाने थामा नाकपु हिरोइन तङ गाँजा तेजिन म्यानपातुई सिफारिस लङ्यौ ट्रामाडोल तङ इस्पास्मो जिम्बु सेनवाय रेडियो नेपाल ने आरिङकी सेरी साङ्गु डुप्सुङ थुचिसे।

0: हजुर निनामी भाजुम एसपी सिङछेन निनासनाथीको रेडियो नेपाललाई रेडियो नेपाल बुधबार पदिक झ्याका उयाच्नुगु जीवन दबु ज्याजो छिसेन झ्याका चुनागु ख प्राविधिक पासा पाखे नकट्ने छिसेन छपो बुद्ध दर्शन बुद्ध धर्म विशेष थन चाहिँ छोगो प्रवचन छोगो मे चिन्त नेबेटुङका छि डाक्टर साहेब कविन्द्र बुचाचार्य नापाउँ वेक चाहिँ वरिष्ठ मिखा रोग विशेषज्ञ ख चुत्यादि डाक्टर साहब छिठो विशेष त छि मिखा रोग यो विशेषज्ञ न ज्वाल उन मस्ते गुपरी छि ठोए अध्ययन चाहिँ छ्याइना दिगो ख थन छि नाप्लको नि
1: सही लागि यहाँको शुभा हजुर जी एमबिबिएस त यो डक्टर जिरुङका छौ विषयले विशेषज्ञता एमडिया माउजु ल अहिले एमडी चाहिँ चाहिँ जाँच ब्याउन माउ गुले जी जाँच बिउ ख उसले मिखायु सम्बन्धी न खुले जोजिया जाँच बिहा नाप्याउल अहिले मिखा यो विशेषज्ञ यो रूपमा बुना बुनी श्रेय जी भैरवायु लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान श्री रण अम्बिका शाह आँखा अस्पतालले ज्याया हुन अन एक डेढ वर्ष ज्याया ढुङ्गा अस्पतालले चौपिनसँग डाइरेक्टर नै जिर चाहिँ मिखायु मस्ते सम्बन्धी फेलोसिप यो लागि प्रस्ताव त्यहाँ बिचाट अहिले उहे प्रस्तावबाट जी स्वीकारेन एक वर्ष होइन मस्त्यो मिखा सम्बन्धी अन्य अध्ययन होइन नप इन्डिया यो अरविन्द हुडी चाहिँ मिखायु अस्पताल ल्याउन एक महिना अहिले हान छ हप्ता अमेरिका क्यासिया इन्स्टिट्युट हुन जी मिखायु मस्त्यो सम्बन्धी ट्रेनिङ कया ठुकठ मिखायु डक्टर जुयु अहिले मस्त्यो मिखा बुनिउपट्टि होटा चुला हो जुल
0: हजुर ध्याटला जिउ पनि स्वास्थ्य यु पनि खलाउ खसा मेला थिति कथ डाक्टर जिउ पनिलाई यक्कु यक्कुए डु ओके मध्ये न आछि मिखै तहे छिन् चाहिँ आज नकर्ने छिन् ध्या दिनुला मिखै तहे छिन् चाहिँ थो अध्ययन यो विषयवस्तु देखादिको छ्याक उके न मस्ते उए
1: मिखायु सम्बन्धी छौला पहिला भुनुले जिम्मे खाइयो भुन्यो रियो मुटी डुमुखो तर ऊ गुपट्टि जिटा अपर्च्युनिटी होला मिखायु भुन्युले नाप्याउ कारण जी बुवाउन तर लिप मिखायम डक्टर जिरुङका अनन जी जब अपरेसन या सुरे होइन जिटा बडो गर्भटाल ठुलो सिक्यो तरौँ विषय गेखमा न मचेटा मचबिका मिखा खङ्का बि अठिए मिखाइ पिँ डक्टर पिँ ढाइ पिँ निपाए मिखा मख पिँ नजिक गयौँ अपरेसन त याद न ठाउँ मखमा बुया हमा लाजुना साला हमा अपरेसन यहाँ कनै खुनु खाना बडो खुसी जुवा एबी उनी जुबले चिसालाई पुनर्जीवन हान खङ्का बिफेबुटी ठो मिखा यो चाहिँ छियो संसार र स्वेबुटी ठो द्वार ख एजु कारण मिखा मन्टकीले छिपी छुए संसार खनिम खोजल अहिले ठजौ खङ्का बिउ मिखायु शल्यक्रिय याउ अथवा विभिन्न कठ उपचारेन मिखायु लुए लङ्का बिरुलाई छौ तरहे पुण्य न लाइगु ठुके चाहिँ एकुसिट सेवा न या फयु ढयुपट्टि जोबले जिट आ एक गर्भटा मिखायु डक्टर ज्या नप हान मस्त्यो मिखा यो गुली महत्त्वपूर्ण डल्ला छ छि उमेर नुगुपिन्ट अपरेसन याबले मानु 70 वर्ष जुमेस शल्यक्रिया टाछ सचिडम वासान सुई न ज्याल ज्याले जिउ हो मिखाजी तर नक्टिन भुमा दक्षिण मरणमा म चाहिँ अपरेसन याबले सचिड तक ज्याउ यो मिखा हो अहिले म चाहिँ यो मिखा हान बालको खङ्का बिमा फुटकी म मिखा मखनिजुको मुख हो व सेकिन भइमुख बालक भुन्न भइमुख मानसिक विकास न ल्याउनु लाग्यो ल अहिले छेचपी सखित न चाहिँ भो जियो ल एजु कारण मस्त यो मिखालाई झने उपचारमा आऊ अझ क्षेत्रीय जिल्ला डरका आऊ यासुले चाहिँ बाल उठासे जिट ठो होटा चुलाउल अर्का सक्नेप्रति जी आभार चाहिँ जी प्रकट गर्न चुना
0: हजुर त्यहाँ चाहिँ जीवन बिमा मा ल जुए चुल मान जीवन बिउसान मिखा बालक मखङ्क चाहिँ जीवन चाहिँ सुधार लाइमुखो
1: हजुर
0: उजुका नयाँ मिखु अपरेसन यामा ल मिखुवै कारण चाहिँ मस्त चाहिँ मसिनमा धैगो कारण नए प्लस चाहिँ छिउ चाहिँ गुल्न फेलोसिप चाहिँ मिखाए जु कारण चाहिँ छि याना दिल त्यहाँ त्यो नेपाली गुल्तको थो चाहिँ मस्त चाहिँ थियो पनि रोगी त छि चाहिँ खना दिल
1: आज जैनाचुनु अस्पताल भैरवा वो लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान धायु अस्पतालले निसिया सचिन निस मस्त मिखायु जाँचु लागि वै लगभग 30,000 मस्तेड चिसा जाचे या वर्षधुनी
0: वर्षधुनी
1: अहिले वर्षधुनी मेखा मोतीबिन्दु जुबिज गया खुस बिरामिटो चिसा सल्लिक्रिया यहाँ जुन
0: मस्तेड
1: गया
0: मोतीबिन्दु
1: मोतीबिन्दु चिसा सेबले उमेर उन्गाजको मोतीबिन्दु देखे चुनी अठे मोहो गुली गुली जन्म जाते मा बोपी मोतीबिन्दु डुपी मस्ते जिउ अथवा मायु पठाए चाहिँ बोले मापिन्स जठालाको वासैस नयाँ बिउ अथवा मान बालक पौष्टिक आहार ने मुखनिउ अथवा मच भुइ बोले मिखा चोट लगे जिउ अहिले मच नहान प्रथम दोस्रो वर्षेन उयो नस बालक मनयु ठिठो झारबन्ड जिउ ठिक ठिक विभिन्न कारण होइन अहिले मिखा चोटपटक लायु अझ कारण होइन चाहिँ मस्ते त नौ मोतीबिन्दु जिय अहिले अझको मोतीबिन्दुलाई दक्षिया चाहिँ लगभग खुस टी चाहिँ चिसा सल्लिक्रिया माला चौडु नप नप मस्त्यो मिखा चोट लाना मिखा टजेना वेपी चाहिँ डछिया सट्याटी मुनुट चिसा शल्यक्रिया या माला चौँ अवस्था डु तल्लास अहिले मिखा यार जिपी मिखा बाङ्गो जिपी अझ पिन चाहिँ डछिया डुनी सट्या टी चाहिँ शल्यक्रिया चिसा या उनी नाचुनुडु ठुला चाहिँ शल्यक्रिया सम्बन्धी झुल
0: झुल
1: हजुर वास या मापी गुली गुली मस्त गुला पठाए चुन माओ नेलाए बुट अथवा एकतिस हप्ता सिया झ बुल अथवा उयो भुबले वजन चाहिँ 1500 ग्राम सिया कमजोर लाग्छ उयो मिखाएको पर्दा विकास जिमाउ ख ऊ बालको विकास मजिया रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी राई ऊ पर्दा यो बिमारी जी
0: हजुर
1: अलि एउटा चाहिँ भु 4 हप्ता लिपे हुना मिखा डुनी पर्दा यो रोग डुलमल लगाए जाचे नसुमा अलि एजुजु जब तक ऊ 44 हप्ता जिम हो उब्लेटको ऊ मिखा सोया ठिक जो रहेछ तोटा बिउ ख ठिक म जसलाई हान उपचार पचान चाहिँ यामा अहिले नप नप उखुनी हप्ता चाहिँ छो एवेरनेस विक न ख छौ रेटिनोब्लास्टमा न्यून मिखायु डुन्चो नान्चा यदि मर्चाका सोबले भौच्यु मिख्ने टल्के जुला लाछ ओ डुनी क्यान्सर डुला अथवा मोतीबिन्दु डुला रहेका चाहिँ छिस ओ सतर्क जिम्माउपट्टि अवस्था डु अहिले ऊ क्यान्सर जुलाल कि मिखा मुख्ने जो मुखो ऊ शरीर फैले ज्या मुनु मस्त ज्यानै हुने एजु कारण थो सचेतना नचिस यामाउपट्टि जाचु न मस्त्यो मिखा अहिले चस्मा टेमाउ समस्या मिखा बाङ्गो जिउ यार जिउ समस्या मिखा चाहिँ एलर्जी जिउ समस्या भुसा नसिया यही हान मिखा इन्फेक्सन जे आइपिनु ऊ अप्ठ्यामियो न्युनेटरम है मायु भु ठासा वेबले सरे ज्याउ अहिले ऊ बालको वा समय मिखा मुखना मिखा चाहिँ डाग जुया भविष्य

0: लिस्ट ग्याम से फिर कप्ते बारी सरकार से खम्दे दोनाला बंगला बन मला विशेष संक्षेप मला काइब्लोन थेन ब्लोन सिंह जंगला रोरी तिनी नोरबोन खांगरी सिंहबा एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लाउंडरिंग एपीजी नांगला इंटरनेशनल को ऑपरेशन रिव्यू ग्रुप ला गे योजना संबंधी लाभ काठोरी लिंगबथान शिवान ब्लोन वागले से नेपाल द ग्रे लिस्ट ग्याम फिर कप्ते बारी सरकार से खम्दे दोनाला बंगला बन मला विशेष संक्षेप हिन्ना काइब्लोन बालेन्द्र शाहला सरकार से जियाबा थिम सोसी विकास ला गे खोर गदे योन योना सिंहबारी बंगलाबन मला विशेष सुक्षिबान ब्लोन युवागले से युलबा से माइबा बिबन युल्डी ज्याबा शासन हिन्ना बिसिनन सुक्षिब मला नोरब्लोन वागले से ग्रे लिस्ट ग्याम फिरका पथनबारी योन बिमा योना थे नियमित रूप री संगदो बा गेखोर गदे संबंधित सरकारी निकाय गदे से सिंगमन खबा थे तेला मूल्यांकन लाबन मला विशेष सुक्षिब मला गेखोरी एपीजी ला रोलोनचेन डेबिट सन्नन से नेपाल से ग्रे लिस्ट ग्याम फिरका पथनबारी लामन गेलाबारी खाम मला विषय संक्षेप मला वित्तीय कारवाही गे दल फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटीएफ से 2081 फागुनी नेपाल दा निदिङ दोना दा ग्रे लिस्ट थान बाबा ग्रे लिस्ट गेम फेक अप थोनमारी नेपाल से गोटु सेङा सुधार ला गे योजना सेङबारी खाम दला विषय पाङ मला चुनन तांगरी सरकार से छार नो दिङ दा बजेट बाबा तयारी लस्ट ब दुइरी निजी थुम से नोरथुम ला संरचना का दा ज्याबो सबरी खाम ला लसी बजेट बाबारी सरकार दा सुझाव पिन मला ग्रेन थिम खांगला सोमचुई से सोमसा ग्रेन थिम पोछेन भरी डाक्टर मनोज कुमार शर्मा नियुक्त तासुब मला संसदीय सुनवाई समिति से तिलमा डाक्टर शर्मा लामिन अनुमोदन लाबा लिछा युलचोहु रामचन्द्र पौडेल से डाक्टर शर्मा दा ग्रेन थिम पोछेन भरी नियुक्त लासुब हिन्ना संवैधानिक सिंगजांगला सिफारिश री युलचोहु से ग्रेन थिम पोछेन पो नियुक्ति लाबा थिम मला डाक्टर शर्मा लामिन अनुमोदन लाबाला पाइयानुन युलचोहु पौडेल से तिलमान ग्रेन थिम पोछेन भरी नियुक्ति लासुब हिन्ना ग्रेन थिम पोछेन पो डाक्टर शर्मा से तिलमान दान थेन गोपनीयता ला गांचा बाली छ ग्रेन थेम्पोन छेनपोला दान नन किन्छु बमला उसम निबा ngachui ding nga chen se prakriti thin paryavaran thumda sunalaba thin suraksha pinman khaba biban biswa banyajantu kosh nepal se nepali sena da bishesh samman la bamala kosh la somchu se somcha din chen la avsarri prakriti thin paryavaran thumda sunalaba ri yogdan pinma biban tilma samman la bamala besi nepali sena se pang bahinna 2032 sal hen se औपचारिक राष्ट्रिय रूप निकुञ्जला सुरक्षा लाभन खाबा दान्दे गोर्चिसेङी राष्ट्रिय निकुञ्ज गोर्खेको वन्यजन्तु आरक्ष थेन गोर्खेको शिकार आरक्ष द सुरक्षा पिनबारी गोर्भे गन गोर्निस गुल्म थेन गोर्खेको प्रकृति संरक्षण शिक्षालय से सुरक्षा पिनमान खाबो मुला विषय पाङ बमुला चुनन साङ्गुर गदेला छ्याम्री तिनी तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञानमा लसिगु लसो फ्याफुल्ला
1: ब्लाब्लाब ग्याम सावधान तागे सापु खारङवा ह्याम हिन्ना
0: सापु गुर्किक मिमराङ मरिया खम्मा ह्याम हिन्ना विशेष लसै नेपालला मध्य पहाड क्यार सापु ह्याम महामारीला रुपरी म्याङ मनमला जु ह्यामला लक्षण गदे म्याङ मला ब्लीची से ब्रेन से निश्चु से गी घण्टा दोनामा मानला बरिया खाम सम ह्याङला मिसे तिलाइन न आमराङ बरि खाम बमला जु बिरन दिङला मिदा लगा तबरि खाम बमला विशेष लसै जाजको लगा देदा लामा ताब मला
1: सापु ह्याम तिला कारण से लगा ताब मला
0: दान्दे दोना तार ब्लब्लब दा सापु ह्याम लगा ताबला कारण मान बमला तसैन कतिपय अवस्था रि बिसाम तार ब्लब ब्लब ला ngamli sutai nu nani ba mida chu yam lagap ta bumala syan jibanu thin bisanu ka dese nun chu yam lagap ta bari khamba mala
1: sapu yam la lachen ka de tila tila hinna
0: 81 gurgik cheken mi wala ta ba thin mi na ya cha ba
1: yaldi jabari akhamba
0: mi sukha ba
1: man lavari gaisam mila laniri tar mrang ba
0: janalasi mi mrang mari akhamba
1: sapu yam da kharang lasi ka ba
0: tar ब्लब ब्लब ग्याम से थारेंग नुंटी बा
1: लानन यालयाल बा तार नांगसाल आमरा बा न्यासे थेन मुना मराप झाल डुंगबा
0: खामदे दोना मराफथेन झालडी जाली झांगबा
1: मेरवा दुइरी नांगसाल साइसी अथवा जाजावा नांगसाल मरासी झुल नांगरे मेरबा
0: योनन मानला बारे खामसम चु याम याम से फान बारे खामबा मला तर गाइन लाजे बिसाम बिरामी से मि आमरांग बारे खामबा मला थेदा बसे चु याम लागा ताबाला संकता सम योन बिमा योन अस्पताल अथवा मिला मानला बा ग्लारी निगे रांगला तो ससे मान अथवा जडीबुडीला प्रयोग आ लागे
1: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना थेन संचार केन्द्र

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषामे समाचार। प्रतिनिधि सभाके आजुक बैठकमे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहके दिशा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सुभिता गौतम गत निर्वाचनके लेल जारी भेल अध्यादेशके प्रतिस्थापन करबन विधेयक दुटा विधेयक प्रस्तुत कयलनि अछि। मन्त्री गौतम प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिल संशोधन विधेयक 2083 आ मतदाता नियमावली पहिल संशोधन विधेयक 2083 प्रस्तुत कयलनि अछि। ई विधेयक प्रस्तुत करबाक लेल अनुमति मांगक प्रस्ताव बहुमतसँ स्वीकृत भेल छल। प्रतिनिधि सभाके दोसर बैठक जेठ 7 गते बृहस्पति दिनके 11 बजे बैसत। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा प्रेस स्वतंत्रता प्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के आकस्मिक शून्य आ विशेष समय में सांसद सब उठौने विषय में जवाब दैत मंत्री तिमिल सिन्हा संविधान देने प्रेस स्वतंत्रता अधिकार पूर्ण रूप में सुरक्षित रहल आ अधिकार केव हनन नहीं कर सकत बतौलनि अछि। वो सांसद सब उठौने प्रश्न आ सुझाव के मंत्रालय गंभीरता के साथ लक सुझावक आधार पर मंत्रालय के काज से प्रभावकारी बनाकर आगू बढ़त से प्रतिबद्धता व्यक्त कलनि। मंत्री तिमिल सिन्हा प्रेस स्वतंत्रता स्वच्छंदता निभा स्वतंत्रता संगे जवाबदेहिता सेहो ओतबा महत्वपूर्ण रहत बतौलनि। ओ संविधान देने अधिकार के निर्धक भक उपयोग कर अपन पेशागत गरिमा आ सीमा भीतर रही कर पत्रकारिता करबाक लेल अनुरोध सेहो कयलनि। ओ प्रेस काउंसिल के क्षमता वृद्धि कऽ प्रभावकारी आ सशक्त बनाकर नेपाल के मीडिया के क्षेत्र के स्वच्छ जवाबदेही आ गौरव कऽ सकबाक क्षेत्र के रूप में विकास करब सरकार प्रयत्नशील रहल बतौलनि। मंत्री तिमिल सिन्हा नेपाल के दुर्गम आ अधिक व्यवसायिक कारोबार होबय वाला क्षेत्र धरि टेलीफोन आ इंटरनेट सेवा के गुणस्तरीय पहुँच बढ़ावा बजट तथा कार्यक्रम सहित व्यवस्थापन करबाक विषय में सरकार के उच्च प्राथमिकता में रहल बतौलनि। ओ चलचित्र क्षेत्र आम संचार के क्षेत्र में काज करय वाला योजना अंतर्गत मौलिक पहचान दियवासन निर्माण कयल जाय वाला चलचित्र के प्रोत्साहन अनुदान देबाक कार्यक्रम सरकार के रहल बतौलनि। संसद भवन में समाचार संकलन के लेल आवय वाला पत्रकार सबके लेल मुख्य भवन बाहर टेंट राखि कऽ बैसक लेल कुर्सी आ पीबक लेल पानि लगायत के व्यवस्था कयल गेल बतबैत संसद भवन बनि चुकलाक बाद समस्या समाधान कयल जायत से बतौलनि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में आबि चुकलाक बाद स्थानीय सरकार के महत्व आ गरिमा व्यापक आ गहन भेल बतौलनि अछि। सुनसरी के कोसी गांवपालिका में निर्माण भेल लौकही सिटी हॉल समुद्घाटन समारोह के संबोधन करैत ओ जनता में न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता तथा जनचाहना हिसाबी विकास के कार्य के तीव्रता दकर संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के मूल्य मान्यता आदर्श अनुरूप के काज के साकार बनावा स्थानीयतः सदैव दत्तचित आ क्रियाशील हेबाक चाहिए बतौलनि। राष्ट्रपति पौडेल स्थानीयतः जनता के सबसे नजदीक के सरकार भेल चर्च करत जन अपेक्षा अनुरूप सब सेवा प्रवाह करब सुविधा उपलब्ध कराब तथा विकास के कार्य सब संचालन करब स्थानीय सरकार के महत्वपूर्ण दायित्व भेल बतौलनि। ओ सप्तकोशी नदी के किनार में रहल कोसी गाँव पालिका ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से सेहो महत्वपूर्ण ठाम रहल चर्च करत अखन कोसी गाँव पालिका में रहल सप्तकोशी नदी के कुसहा घाट में प्रजातंत्र प्राप्ति के लेल क्रांति भेल आई ठाम समंद प्रजातांत्रिक आंदोलन से जोड़ल गेला सा इतिहास के स्मरण कलन। राष्ट्रपति पौडेल 2065 साल में कोसी बांध टूटला पर बस्ती विस्थापित भेल आई ठाम बस्ती पुनः स्थापित भेल आ विकास की गतिविधि सब तीव्र रूप में संचालन भेल देखला पर स्वयं के खुशी लागल कहत तीनों तह के सरकार के हाथ में हाथ मिलाकर अ बाढ़ी पीड़ित जोखिम युक्त क्षेत्र में विपद व्यवस्थापन के पूर्व तैयारी के पर्याप्त व्यवस्था करबाक लेल ध्यान पहुँचबाक अपेक्षा रखने बतौलनि। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले नेपाल के संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी ग्रे लिस्ट ज्यूरिडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग से बाहर निकाला सरकार सब संभव उपाय अवलंबन करत से बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय के समन्वय में आय अर्थ मंत्रालय में आयोजित एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग अंतर्गत के इंटरनेशनल कॉपरेशन रिव्यू ग्रुप कार्य योजना संबंधी विचार विमर्श में ओ नेपाल के ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला सरकार पूर्ण रूप में प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। एपीजी के प्रतिनिधि संघ के विचार विमर्श में अर्थमंत्री डॉक्टर वागले संपूर्ण सामर्थ्य उपयोग कर नेपाल के ग्रे लिस्ट से मुक्त कयल जात से बतौलनि। अर्थमंत्री डॉक्टर वागले ग्रे लिस्ट से बाहर होबय लेल तत्काल आ नियमित रूप में करय वाला काज सब संबंधित सरकारी निकाय सब आगू बढ़ा रहल तथा आय के निरंतर मूल्यांकन भ रहल जानकारी देलनि। बीतल समीक्षा अवधि के तुलना में ग्रे लिस्ट संबंधी सूचक में नेपाल के अवस्था में सुधार आयल
ओ बतौलन। कार्यक्रम में एपीजी के उप कार्यकारी सचिव डेविड एसियन नेपाल के गृहलिस्ट से बाहर होबले अखनो पर्याप्त काज कर लेल बाकी रहल टिप्पणी कलन। विचार विमर्श में अर्थ मंत्रालय, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगात संबंधित निकाय के अधिकारी सबके सहभागिता रहल छल। वित्तीय कार्रवाई कार्यदल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FTF 2081 फागुन में नेपाल के दू वर्ष के लिए ग्रे लिस्ट में रखने छल। अ सूची से बाहर होब नेपाल 15 बुंदे सुधार के कार्ययोजना प्रति प्रतिबद्धता जनबित वह हिसाबी काज कर रहा है। राष्ट्रसभा अंतर्गत के विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति के बैठक में सांसद सब गुणस्तरहीन खाद्य उपभोग से स्वास्थ्य में होवे वाला असर न्यूनीकरण करवाक लेल खाद्य गुणस्तर परीक्षण बढ़ेबाक चाही बतौलन। समिति के सिंह दरबार में बैसल बैठक में आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट तर्जुमा संबंध में मंत्रालय के सचिव आ उप सचिव सब संग कायल गेल विचार विमर्श में सांसद सब आयात के निरुत्साहित करत किसान के उपयुक्त अनुदान के व्यवस्था मिलाल जवाक चाहिए, कृषि तथा खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेबाक चाहिए बतौलन। बैठक में उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव कृष्ण बहादुर राउत, हरित अर्थतंत्र, डिजिटल व्यापार तथा ई कॉमर्स प्रवर्धन आ उत्पादनशील उद्योग के विकास में मंत्रालय प्रतिबद्ध रहल बतौलन। एना कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा आ सचिव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र माटि के उर्वरा शक्ति अभिवृद्धि, कृषि योग्य भूमि आ वन क्षेत्र के संरक्षण तथा आधुनिकीकरण के प्राथमिकता दैत एहि क्षेत्र में निजी तथा वैदेशिक लगानी बढ़ाल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलन। बैठक में युवा, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के सचिव डॉक्टर दीपक काफले पिछड़ल गेल समुदाय, जिनजी घायल आ शहीद परिवार के लक्षित कर सी विकास, तालीम आ युवा वर्ग सबके लिए आंतरिक रोजगारी प्रबंधन मंत्रालय प्राथमिकता में रखने जानकारी दिलन। अना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव मुकुंद प्रसाद निरौला नीति तथा कार्यक्रम में समेटल गेल विषय सब तथा मंत्रालय के कार्यक्षेत्र अंतर्गत पड़े वाला पर्यटन प्रबंधन आ संस्कृति के संरक्षण संबंधी कार्यक्रम के निरंतरता देव थप बजट आवश्यक रहल बतौलन। मध्य प्रदेश प्रमुख सुरेंद्र लाल कर्ण समक्ष आई महालेखा परीक्षक कार्यालय के आठम वार्षिक प्रतिवेदन पेश कल। जनकपुर धाम स्थित प्रदेश प्रमुख के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महालेखा परीक्षक कार्यालय के नया महालेखा परीक्षक तारा प्रसाद पांडे आर्थिक वर्ष 2081-82 के लेखा परीक्षण संबंधी आठम वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख कर्ण के बुझौलने। प्रतिवेदन में प्रदेश सरकार अंतर्गत मंत्रालय, निर्देशनालय, स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक निकाय के आर्थिक कारोबार आ स्वसंकलन, बजट कार्यान्वयन, खर्च प्रणाली तथा वित्तीय अनुशासन संबंधी विषय समेटल गेल बताल गेल। प्रतिवेदन बुझित प्रदेश प्रमुख कर्ण सुशासन, प्रवर्धन, आर्थिक अनुशासन कायम तथा सार्वजनिक निकाय के थप जिम्मेवार बनाबा महालेखा परीक्षण के भूमिका महत्वपूर्ण रहत से बतौलन। प्रदेश प्रमुख कर्ण सार्वजनिक स्रोत साधन के पारदर्शी तथा प्रभावकारी उपयोग हेबाक चाहिए चर्च करत, आर्थिक कारोबार के नियम संबत, मित व्यय या जनतुत्तरदायी बनाबा सब निकाय के जिम्मेवार हेबाक चाहिए धारणा रखलन। ओ लेखा परीक्षण से आयल गेल कमजोरी के ठीक कर सकला पर मात्र सुशासन आ विकास प्रति के जन विश्वास मजबूत हाथ से बतौन। तथ्यांक समन्वय कार्यालय वीरगंज परसा के बड़का औद्योगिक प्रतिष्ठान सबसे आर्थिक गणना के लिए आवश्यक तथ्यांक संकलन में समस्या भेल जनौलक। तथ्यांक समन्वय कार्यालय के वीरगंज के प्रमुख पुष्कर बिजुक्षे परसा के बड़का औद्योगिक प्रतिष्ठान से आर्थिक गणना के लिए आवश्यक रहल तथ्यांक गणक के उपलब्ध नहीं करौने दावी कलन। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम राज्य कर चाहने आर्थिक गणना के लिए आवश्यक तथ्यांक देवा उद्योगी व्यवसायी तैयार रहल ओ दावी कलने। मधेश कृषि क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ल कारण धान, मत्स्य तथा वन क्षेत्र देवला योगदान तुलनात्मक रूप में कम भेल कारण से चालू आर्थिक वर्ष में आर्थिक वर्ष दर वृद्धि दर कमजोर रहत से रहत। राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय अंतर्गत के तथ्यांक समन्वय कार्यालय धनसाई जनकपुर धाम में प्रादेशिक कुल गृहस्थ उत्पादन अनुमान संबंधी समष्टिगत आर्थिक सूचक सब सार्वजनिक करत ए बात की जानकारी करौलक। एहिबेर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पड़ल कारण धान तथा मत्स्य उत्पादन में नकारात्मक प्रभाव पड़ला से बीतल तीन वर्ष एमरेस के सबसे कम कुल गृहस्थ उत्पादन में 1.31% आर्थिक वृद्धि दर हासिल होबाक जानकारी तथ्यांक अधिकृत नर बहादुर कुंवर देलने। आब खेल समाचार। जनकपुर धाम में जारी रहल शहीद कप महिला T20 क्रिकेट लीग प्रतियोगिता अंतर्गत आई भेल दू खेल में सीधा परसा जिला विजयी भेल। जनकपुर धाम के निर्माणाधीन राम जानकी बहुउद्देश्य रंगशाला में मध्य प्रदेश के खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय के आयोजना में जारी रहल शहीद कप अंतर्गत भिनसर भेल खेल में

पराजित भेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्य पूर्व में जारी संकट के कारण विश्व अर्थतंत्र में दबाव पड़ल अछि। एहिसँ आर्थिक वृद्धि सुस्त बनौने, मुद्रास्फीति पुनः बढ़ौने तथा विश्व वित्तीय बाजार में अनिश्चितता बढ़ौने संयुक्त राष्ट्र संघ जनौलक अछि। मंगल दिन सार्वजनिक कयल गेल विश्व आर्थिक अवस्था तथा संभावना 2026 मध्य वर्षीय अध्यावधिक प्रतिवेदन हिसाबे सन 2026 में विश्व कुल गृहस्थ उत्पादन वृद्धि दर 2.5% रहबाक अनुमान कयल गेल अछि। आई जनवरी में कयल गेल प्रक्षेपण सँ 0.2% बिंदु सँ कम अछि। सन 2027 में 2.8% के सामान्य सुधार हेबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवासँ सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रथम संशोधन विधेयक और मतदाता नामावली प्रथम संशोधन विधेयक प्रस्तुत। प्रतिनिधि सभा की मर्यादा बनाए रखने के लिए सांसदों से सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने किया आग्रह। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं और विकास कार्यों में तेजी लाकर लोकतांत्रिक गणतंत्र के मूल्यों को मजबूत बनाने पर राष्ट्रपति रामचंद्र ने दिया जोर। कक्षा 11 की पढ़ाई आषाढ़ 1 गति से शुरू करने का शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय का निर्देश। और चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बीजिंग में भेंटवार्ता। अब समाचार विस्तार से। आज प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रथम संशोधन विधेयक 2083 और मतदाता नामावली प्रथम संशोधन विधेयक 2083 प्रस्तुत किए गए। बैठक में प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविधा गौतम ने दोनों विधेयक प्रस्तुत किए। इससे पहले प्रतिनिधि सभा के आकस्मिक शून्य और विशेष समय में सांसदों द्वारा उठाए गए विषय पर जवाब देते हुए सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा कि सरकार प्रेस स्वतंत्रता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्री तिमल सिन्हा ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है और इस अधिकार का कोई हनन नहीं कर सकता। उन्होंने सांसदों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और सुझावों को मंत्रालय गंभीरता से लेने तथा सुझावों के आधार पर मंत्रालय के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रेस काउंसिल की क्षमता वृद्धि कर उसे अधिक प्रभावकारी और सशक्त बनाते हुए नेपाल के मीडिया क्षेत्र को स्वच्छ जवाबदेह और गौरवपूर्ण क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार प्रयासरत है। मंत्री तिमल सिन्हा ने यह भी कहा कि नेपाल के दुर्गम तथा अधिक व्यावसायिक गतिविधि वाले क्षेत्रों तक टेलीफोन और इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण पहुंच बढ़ाने के लिए बजट एवं कार्यक्रम सहित व्यवस्था करना सरकार की उच्च प्राथमिकता में है। इसी तरह सांसदों द्वारा उठाए गए विषय पर जवाब देते हुए युवा श्रम तथा रोजगार मंत्री रामजी यादव ने कहा कि देश के भीतर पर्याप्त रोजगार सृजन कर युवाओं को स्वदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना मंत्रालय की पहली प्राथमिकता है। मंत्री यादव ने कहा कि केवल वैदेशिक रोजगार को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना ही नहीं बल्कि देश के भीतर पर्याप्त रोजगार सृजित कर युवा शक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी मंत्रालय की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैदेशिक रोजगार के नाम पर होने वाले शोषण, ठगी और अनियमितताओं के प्रति सरकार की शून्य सहनशीलता की नीति है। श्रम मंत्री यादव ने सदन को जानकारी दी कि भविष्य में ठगी नियंत्रण और आप्रवासन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं न्याय संगत बनाने के लिए वैदेशिक रोजगार की पूरी प्रणाली को पूर्ण रूप से डिजिटलाइज्ड करने की नीति अपनाई जाएगी। इससे पहले आज की बैठक में सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए सांसदों से आग्रह किया था। श्रम संस्कृति पार्टी के सांसदों द्वारा प्ले कार्ड लेकर विरोध प्रदर्शन करने पर सभामुख अर्याल ने विरोध की शैली को असंसदीय बताते हुए व्यवहार सुधारने की चेतावनी दी। बैठक में सभामुख अर्याल से समय लेकर श्रम संस्कृति पार्टी के अध्यक्ष हरकराज राय ने कहा कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को संसद के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए तथा उनके द्वारा उठाए गए विषयों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सीमा, सहकारी संस्थाओं की राशि वापस, सुकुम्बासी प्रबंधन सहित आम जनता द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर वे प्रधानमंत्री और मंत्रियों से प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बनने के कारण उन्हें विरोध करना पड़ रहा है। बैठक में सांसदों ने शिक्षा और स्वास्थ्य में आम नागरिकों की पहुंच बढ़ाने, सुकुम्बासी और बेघर लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने विभिन्न विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि लोकतांत्रिक गणतंत्र में स्थानीय सरकार का महत्व और गरिमा व्यापक तथा गहन है। आज संसरी के कोशीगांव पालिका में निर्मित लौकही सिटी हॉल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि जनता की न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं तथा जनचाहना के अनुरूप विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाकर संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के मूल्य मान्यता और आदर्शों को सशक्त बनाना आवश्यक है। स्थानीय तह को जनता के सबसे निकट की सरकार बताते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि जन अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा प्रदान करना, सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा विकास कार्य का संचालन करना स्थानीय सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति की बैठक में सांसदों ने निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थों के उपयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए खाद्य गुणवत्ता परीक्षण बढ़ाने की आवश्यकता बताई है। समिति की आज हुई बैठक में आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट निर्माण संबंधी विषय पर विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ हुई चर्चा में सांसदों ने आयात को निरुत्साहित करते हुए किसानों के लिए उपयुक्त अनुदान की व्यवस्था करने तथा कृषि और खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय ने कक्षा 11 की पढ़ाई आगामी आषाढ़ 1 गति से शुरू करने का निर्देश किया है। मंत्रालय ने शैक्षिक सत्र 2082 की माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SAE का परिणाम प्रकाशित हो जाने के संदर्भ में कक्षा 11 की पढ़ाई आगामी आषाढ़ 1 गति से संचालित करने का निर्देश जारी किया है। मंत्रालय अंतर्गत शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केंद्र ने आज शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइयों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। बांके की निर्मला कुर्मी के अपहरण बंधक बनाकर रखने तथा हत्या संबंधी मामले की निष्पक्ष जांच सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 23 दिनों से अनशन पर बैठे अधिकार कर्मी रूबी खान और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 5 सूत्रीय सहमति हुई है। बांके के नेपालगंज स्थित संजीवनी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस नेपालगंज अस्पताल में अनशनरत खान ने सरकार की ओर से वार्ता के लिए भेजी गई विशेष टोली के साथ सहमति होने के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। सहमति के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय बांके में 20 जैत 2077 को दर्ज निर्मला कुर्मी के अपहरण बंधक तथा हत्या संबंधी मामले में अब तक हुए अनुसंधान का अध्ययन कर यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा निर्मला कुर्मी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलनरत रूबी खान तथा अन्य महिला अधिकार कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रहरी और प्रशासन कार्यालय को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को निरंतरता मिलेगी। आज महोत्तरी के वर्दीवास में आयोजित मध्य प्रदेश स्तरीय भेला एवं जरा अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभापति थापा ने पार्टी पंक्ति को कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की हर गतिविधि को सामाजिक आंदोलन से जोड़कर आगे बढ़ाने का निर्देश भी दिया। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिक्रमित 442 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश वन निर्देशनालय जनकपुर के अनुसार वर्षों से अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली करने तथा करवाने के लिए संबंधित वन कार्यालयों द्वारा सूचना जारी किए जाने के बाद प्रदेश के सभी 8 जिलों से 442 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया यात्रा के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंचे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शिखर वार्ता करेंगे। इस साल पुतिन की ये पहली विदेश यात्रा है। इससे ये भी पता चलता है कि मौजूदा माहौल में चीन कितना अहम बन गया है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार और उसका प्रमुख सहयोगी बना हुआ है। व्लादिमीर पुतिन इस संबंध को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बैठक में उस नई गैस पाइपलाइन पर खास फोकस होगा जो हर साल 50 अरब क्यूबिक मीटर तक नेचुरल गैस चीन तक पहुंचा सकती है। हाल के महीनों में कई वैश्विक नेता व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के मकसद से चीन का दौरा कर चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन भी इस कड़ी में शामिल हो गए हैं। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रथम संशोधन विधेयक और मतदाता नामावली प्रथम संशोधन विधेयक प्रस्तुत। प्रतिनिधि सभा की मर्यादा बनाए रखने के लिए सांसदों से सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने किया आग्रह। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं और विकास कार्यों में तेजी लाकर लोकतांत्रिक गणतंत्र के मूल्यों को मजबूत बनाने पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ ने दिया जोर। कक्षा 11 की पढ़ाई आसार एक गति से शुरू करने का शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय का निर्देश। और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बीजिंग में भेंटवार्ता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: फोर जी एलटीई मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।

कृष्ण का गोविंद राधे, स्मरण श्रवण अरु कीर्तन बता दे। राधा गोविंद गीत। जीवात्मा को वास्तविक लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति को एकमात्र उपाय श्री कृष्ण भक्ति ने हो, जस अंतर्गत श्रवण कीर्तन एवं स्मरण भक्ति प्रमुख हुन। राधा गोविंद गीत को यो संदेशमूलक दोहा का साथे कार्यक्रम अध्यात्म संदेश में यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं राधे राधे। श्री राधा माधव समिति नेपाल श्यामा श्याम धाम टिमी द्वारा संचालित यो कार्यक्रम रेडियो नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण अन्तर्गत यहाँहरूले हरेक दिन बिहान ठिक 5:25 बजेदेखि दैनिक रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौँ सुमधुर पद गायनबाट। प्रस्तुत पद जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराज।